0: सूचना सूचना सूचना
1: दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका नगर लामा संघ को आयोजना में कौन

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलों सामुदायिक एफएम बैनिक थोपलो सात मेगाहर्ज़बाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 26 तारीख भाद्र 10 गते बुधवार त्रयोदशी 4 घड़ी 8 पलम मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरी।

सारी छयाहुन राजा नौशकाय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परेका घरे मंडाखुन सबले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सही